आदि हरियो जटाए उतारी गो सुग्रीव सामा भेट भयो बाली मरन गयो लंकापुरी खाग भयो रावण कुमकर्ण मरन गयो श्री रामायण यति हो नारायण।

சவாயிலே சவாய் புதாத்தினி நிறை விபூதி சிருஷ்டிகா பசிபேரமா பரலாயமா மொய கிரந்து பகாத் முதேகி பாயக கோய் சைனா கஹேரை நிறை சர்வோதகா सते रजर तमगण पञ्चय महाभूत दशै सृष्टिका पहिले मै थिए भगत कोही थिएनन् अरु जो देख्छ अहिले सबै बुझ तिमी मेरै विभूतिहरु सृष्टिका पछि फेर महापरलायमा मै ग्रहन्छु भगत मुदेखि

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

प्रत्येक साताको शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपरान्न 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

0: हाथ मत लगाना
1: चलो आगे चलो
2: क्या हुआ डैड
3: कुछ नहीं हुआ बेटा बस थोड़ा सा चलो
0: बहुत कुछ हुआ है आओ जाओ यहां से सिक्योरिटी रूम आउट
2: हाथ मत लगाना
0: आज के बाद अपनी मनुष्य शक्ल कभी मत दिखाना
2: भाई मारा भी
4: बेटा अगर असूया नहीं आया होता तो इन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया होता
3: इनकी दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है बेटा अब हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं

मेरो नाम झलकमाया नर्के मेरो घर वडा नम्बर 7 भदौरे कालिन्चोक गाउँपालिका।

0: Mania and Extreme Energy Drink.
1: हाईटेक नर्सरी में उत्पादित गुणस्तरीय फलफूल जड़ीबुटी विभिन्न बिरुवा को भरपर्दो गंतव्य कल्पवृक्ष बहुउद्देश्य नर्सरी फार्म यहां लोरसल्ला किमूर कागती सुन्तला जापानीज हलुआ बेद जापानीज नस्पति रेड किबी ग्रीन किबी मेकाडेमिया लगायत विभिन्न फलफूल तथा जड़ीबुटी जन्य बिरुवा उपलब्ध छन्। सीजन अनुसार का बिरुवा खरीद गर्न आज सम्पर्क गर्नुहोस्। संस्थागत खरीद में विशेष छूट को व्यवस्था पनि छ। व्यक्तिगत रूप में 100 भन्दा बढी बिरुवा खरीद गर्दा पनि छूट को व्यवस्था गरिएको छ। सम्पर्क व्यक्ति ईश्वर थापा, फोन नम्बर 9849185662 9849185662। कल्पवृक्ष बहुउद्देश्य नर्सरी फार्म भीमेश्वर नगरपालिका 3 चरीकोट भीमेश्वर नगरपालिकाको कार्यालय सँगै।
2: यो रेडियो सैलुङको समय सूचक हो।
3: यति बेला साँझको 5 बजेको छ।

0: Extreme energy drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज

मेरा आत्मा धूप तिम्रो तिम्रो रूप भगवान को गर्छु ध्यान भगवान को गर्छु ध्यान।

नमस्कार रेडियो सैलेन्स सामुदायिक एफएम 97.7 मेगाहर्ट्जबाट म बद्री प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्मत 2083 साल आषाढ कृष्ण पक्ष सन् 2026 जुलाई 8 तारिख असार 24 गते बुधबार अष्टमी तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पे भरे